प्यार पिता देवेगा, पड़ोसी नहीं दे सकता। जो स्वाद अंब विचों आवेगा, अंबली विचों नहीं। ऐ गुरु के सिख, जो उपकार तेरे ते गुरु कर सकदा, संसार दा होर कोई जीव मात्र नहीं कर सकदा। ना मां ना बाप, ना भैन ना भरा, ना कोई रिश्तेदार। गुरु दा उपकार बहुत वड्डा। भाई साहब कहंदे ने सारा संसार ढूंढ के आ, लहंदे तो लैके चढ़दे तो लैके लहंदे तक नवा खंडा विच घूम के आ, गुरु वर्गा प्यार।

प्राचीन अते प्रसिद्ध राग गुजरी भगती भाव दे गायन लई विशेष अनुकूल मन्या जांदा है। इस राग दी संपूर्ण रचना करुणा रस नाल ओत पोत होने कारण संगीतकार ने इस दी प्रकृति करुण मन्नी है। हर श्रद्धा हर प्यास इस दा तरला है। शौ नूं पौणा ही जीवन दा मकसद है। यही दर्शाया है गुजरी जात गवार जा सौ पाए अपना गुर कै शब्द विचार अन दिन हर जप जापना। सौ पौण लई तन मन अर्पो पूज चढ़ावो सब कुछ ही अर्पणा पैंदा है। इस राग विच ऋषव गंधार अते धैवत कोमल लगदे हन। मध्यम तीबर है और पंचम वर्जत है। निषाद शुद्ध लगता है। इसका बादी सुर धैवत अते संवादी रे है। गायन समा दिन का दूजा पहर। निर्धारित राग गुजरी विच पहला शब्द श्रवण करो। गा रहे हैं भाई तेजपाल सिंह जी भाई सुरिंद्रपाल सिंह जी सिंह बंधु। शब्द दे बोल हैं ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो। दूजा शब्द भाई निरंजन सिंह जी की आवाज विच श्रवण करो। शब्द है गुजरी जात गवार जा सौ पाए अपना। पहला शब्द ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो।

Hadi iradeler sana. अचानक राजे नु जाग हुई। राजे ने की तके रानी वाला पलंग खाली पे है। भाई साहब भाई गुरदास जी लिख दे रानी वाला पलंग खाली है। थोड़ा समा राजे ने उड़ीक की थी, पर जिस वेले राणी नू राजे ने नहीं तकिया तो भाई साहब जी लिखते हैं राजे दे मन च बड़ी हैरानी। अद्धी रात दा समय राणी किधर चली। राजा उठिया महल दे अंदर राणी नू लभण लग गया। सारे कमरे वेखे पर राणी दिस ना भी मन विच वरत गई है। तो प्यारी साध संगत राजे दे मन विच राणी दे मतलब चंगे ख्याल भी आउण लगे मंदे भी आउण लगे। राणी दा मेरे नाल प्यार तो बड़ा है पर अद्धी राती राणी दा महल विचों गैर हाजिर होना ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠਾ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਲੇਟੀ ਹੋਈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਰਾਣੀਏ ਉਠ। ਰਾਣੀ ਉੱਠੀ। ਰਾਜਨ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਰਾਣੀ ਤੇ ਕਿ ਰਾਣੀ ਇਹ ਸੱਚ ਦੱਸ ਤੂੰ ਰਾਤੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੂੰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ जे मैं सच दसदी हां ता जिथे मैं रोज जांदी हां हो सकदा है राजा रुकावट पा देवे।

अनंसाव का पाठ करके कीर्तन भी समाप्त दी। अरदास होवेगी हुक्मनामा कड़ा प्रसाद दी देख बच्चिया वालों गुरमुख परिवार वालों जो सेवा है वो भी प्रवान करनी। तो आओ हम अनंसाव का पाठ सारे मिलके करिए। गुरु नानक पातशाह मेहरबान सतगुरु आप जी दे प्यार वाले गुरसिख माई भाई साहब जी जिन्हां नूं आप जी ने बख्शिश करके ए दात बख्शी तो आप जी दे दरबार ही जुड़ के आप जी दे बख्शे खजाने विच सतगुरु आप जी दे पवित्र पावन शब्द का आदर करदे हैं कीर्तन भेट गाउण अरदास कराउंदे हैं। अंतरगामी गुरु जी आप अपने गुरसिखां नूं बच्चे बच्चिया नामदान बख्शो कारोबार च वाधे बख्शो सिखी जीवन सत्संग दी दात।

दगड़ी धिम धी दांग दगड़ी धिम धिरना दगड़ी धर्म धी दांग दगड़ी धिम धिरना दगड़ी धर्म धी दांग दगड़ी धिम धिरना ਤਾਗੜ ਦੀ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿਗ ਤਾਂ ਤਾਗੜ ਦੀ ਦੇਮ ਦਿਰਨਾ ਤਾਗੜ ਦਾ

परम सत्कार योग हाजिन साध संगत जी पेशतर इसते के कीर्तन आरंभ किया जाए। दशमेश पिता जी दी असीस बख्शीश फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी का शहीदी पर्व रल मिल के मना रहे हो, बतौरे कौम भागा वाले हो जेड़े अपना गुरुआं दे तीन दिहाड़ मना दे हां। सवेर तो आसा पूर्ण आसा दीवार दा कीर्तन शरण कीता है। मोहतरम सत्कार जो बागी जी तो गुरु दे जीवन संबंधी शहादत संबंधी विचार शरण कीते ने। आप ते दासा ने तकरीबन 10:30 बजे तक कीर्तन करना है। आप जिन्ने एक बैठे हो ध्यान पूर्वक श्रवण करना। दूसरी अर्ज ए है कि इंग्लैंड दी इस फेरी समय इस स्टेज ते दास दा तकरीबन आखरी कीर्तन है। इस तो बाद आपके दास ने वापस देश परत जाना है। जेड़े सज्जन थले चाह पीन पै गए वो शक के आ जाएंगे। तुसी इस तरह एकाग्रता बख्शनी बहुत बहुत धन्यवादी होवांगा। रल मिल के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करिए। शब्द आरंभ है धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह दा। बीत जय है जन्म अकाज रे।

बिन बाजे कैसो नृतकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरथे सब काज। नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जेवा कहा को बक्ता, बिन श्रवना कहा को सुनता। बिन नेत्रा कहा को देखे, नाम बिना नर कहीं न लेखे। बिन विद्या कहा को पंडित, बिन अमरे कैसे राजमंडित। बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना। बिन बैराग कहा बैरागी, बिन हो त्याग कहा को त्यागी। बिन बस पंच कहा

गोविंद ना भजे अहं बुद्ध माता जन्म जुए ज्यों हारे। नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे। छापर बांध सवारे तृण को द्वारे पावक जारे। कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन से डारे। मोढ़े वस्त्र का जर में

साहिब गुरु तेग बहादुर साहिब जी का दूजा शब्द भी मन दे प्रति है। पातशाह फरमान करते हैं

गौड़ी चेती, शब्द भी गौड़ी चेती, श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच उसी राग विच ए शब्द उचारिया है भगत जी ने, उपर सिरलेख है गौड़ी चेती भगत कबीर जी दा।

सतगुरु सच्चे पातशाह आप जी के चरण कमलों से नमस्कार। सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज श्री राग महला पहला का यह शब्द है। इस दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं कि ऐ स्त्री ऐ जीव स्त्री जब तेरा प्रिय प्रसन्न नहीं है तो श्रृंगार का की अर्थ होया, श्रृंगार का की मतलब है जब फिर ही नहीं फिर वाली ही नहीं तो तेरे श्रृंगारा का की मायना। श्रृंगार ते फिर दे नाल ही सुंदर लगते हैं ते बिना फिर तो श्रृंगार करने वाली औरत नूं कहिंदे हन दर घर टोई नाल है। उसनूं ना दर घर दे विच किते भी कोई टोई नहीं हुंदी, दरगाह झूठ खुआर अते दरगाह दे विच कोई झूठी हुंदी है क्योंकि उसने किस लई श्रृंगार किया अते ओ खुआर हुंदी। आओ अज इस कीर्तन नूं पिछले कीर्तनां दी लड़ी दे नाल जोड़िए। जब तेरा अंदर ही गलिया पिया है सब गुण तेरे गल चुके हैं अंदर गलिया पिया है और उपरों तू श्रृंगार कर दी तेरे सारे ही गुण गल गए हैं, सारे तेरे गुण गल गए हैं फिर तो दूर जान नाल, फिर तो दूर जान नाल मंदिर दे विच भगवान होवे, मंदिर दे विच अगर भगवान ही नहीं रहा तो फिर मंदिर कादा रह गया, एक सुन्नी इमारत रह गई। तू उस अकाल पुरख वाहिगुरु की पत्नी सी, औरत सी, एकाया जब तू उस नालों ही टूट गई फिर तू सुहागण किस तरह रह गई, फिर तू सुहागण ना रही, फिर तेरा दर्जा सब तो उत्तम ना रहा। अते उस फिर तो वाहिगुरु तो अकाल पुरख तो आत्मा तो दूर चली जान दे नाल तेरे सारे ही गुण गल गए हैं। असी सुनिया सी ना हर बिसरत तेरे गुण गले, जदों तेरे सारे ही गुण ही गल चुके हैं अंदर टोटल रॉटन हो चुका है तो तेरे बाहरले श्रृंगार बाहरलियां सुगंधियां बाहरली सजावट मांग छपाया होया संधूर पहने हुए गहने कि तेरे उस अंदरले गले हुए हिस्से नूं ते छुपा सकेंगे। जब तेरे तमाम गुण गल चुके हैं रटन हो चुके हैं अंदर तेरी दी ए तस्वीर है ते तेरे श्रृंगार का की अर्थ है, गुण गल चुके हैं। अज दे इस कीर्तन बहुत गौह दे नाल सुनना विचारना क्योंकि गुरु बाबा जी आखते हैं कि ऐ स्त्री
ਅਜੀਬ ਇਸਤਰੀ, ਉਸ ਪਿਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਉਸ ਪਿਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਸਮਝ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਪਏ ਹਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣੋ ਹੁਣ।

इसका अर्थ हर गुण गंफो, गंफो मैंने माला प्रभु, हार प्रभु, गुंदो केंदे हर गुण हरी दे वाहिगुरु दे गुणा दी माला प्रो के गल दे विच पहन लो। कितना पवित्र, कितना उच्चा सुच्चा बाबा जी का उपदेश है। अकाल पुरख वाहिगुरु की भगती करनी है, भगती दे विच वख वख स्टेजेस हैं, वख वख स्टेजेस हैं। एक स्टेज है जिथे सुरत शब्द का समेल हुंदा है, सुरती दे नाल ध्यान दे नाल अपने अंदर उस परम ज्योत नू अनुभव किया जाता है, सुरती दे नाल अकाल पुरख वाहिगुरु नाल लिव लगाई जाती है। पर असी की उस हुणे ही उस अवस्था च हां कि असी वो कर सकांगे? साडा तो मन जिहड़ा असी पाठ करन बैठांगे तो इधर उधर खिंड जाएगा, वो एडवांस लैवल है। भक्ति दी एक स्टेज दे विच ज्ञान बड़ा परिपक् हुंदा है, गुरु दा ज्ञान, तपन तप गुर ज्ञान, तपा दा तप है गुरु दे ज्ञान नू अपने अंदर उतार लैना, गुरु दे ज्ञान नाल अपने जीवन नू अपने विचारां नू भर लेना, अपने विचार अपने ना रहन, सिर्फ गुरु दे विचार ही विचार साडे अंदर रह जान, अते उना विचारां नू एक्सरसाइज करनी, ए भी एक मंजिल है। तो अलग अलग अवस्थावां हन। दास तो अज भी पुछया गया है कि इह सब कुछ सुनिया है पर असां हुण की करना है। असी हाईएस्ट लेवल तो ते आरंभ कर नहीं सकते कि बहुत कोई उच्चे अभ्यास की गल की जाए कि सुरती नू दसन द्वार च किवें टिकाओ, त्रिकुटी च किवें टिकाओ, ओ ते काफी सारी अवस्था बनन तो बाद काफी सारा सिमरन अभ्यास

सत्य संतोख दया धर्म श्रृंगार बनावो। कहिंदे आ श्रृंगार बनाओ पत्नी नूं, जदों ओ पत्नी बनती है, जदों उसका मिलन हुंदा है, जदों उसकी शादी हुंदी है तो श्रृंगारी जांदी है। कहिंदे अकाल पुरख वाहिगुरु भी अपनी दुल्हन नूं उदों ही कबूल करता है जदों पूर्ण तौर ते गुणां दे नाल श्रृंगारी पई होवे, श्रृंगारी पई होवे। पर किहड़े किहड़े श्रृंगार दे नाल, किस श्रृंगार दी गल करदे हन? सत संतोख दया धर्म श्रृंगार बना, इस श्रृंगार बना। ऐ श्रृंगार है, ऐ गुण है। सत का मतलब है पर उपकार देना, सेवा, किसी के काम आना। क्योंकि जदों लफ्ज दो गुरबाणी असूल है कट्ठे आन के सत संतोख, उत्थे सत का मतलब ट्रुथ नहीं है, सच नहीं है। ऐ असूल सत संतोख, सत का मतलब है संतोख, और सत नूं जो महाराज जी ने जोड़िया उस दे विच गहरा राज है। अपने प्रति जो भी पास है उस संतोख, पर देण वेले संतोख नहीं धारण कर लेना, दूसरे नूं देण वेले नहीं संतोखी बन जाना, उसले वध तो वध जो हो सके वो करना है, वो देना है। पर असी अपने प्रति संतोखी नहीं है, दूसरे प्रति असी संतोखी, जिहड़ियां सानू जरूरतां हन उन्हां दे विच संतोख नहीं। वी वांट मोर एंड मोर एंड मोर, ल्यो ल्यो करते फिरे सब लोग, सारे लोग लै लवां लै लवां लै लवां, बस मैनू मिल जाए, यही करते फिरते। कहिंदे स्टॉप दैट, संतोख धारण करो। पर जदों परोपकार का सवाल आता है, देण का सवाल आता है, उदों संतोख ना धारण कर लो। सत संतोख दया अते अपने अंदर कंपैशन, दया, किसी का दुख देख के बर्दाश्त ना करना, किसी नूं हर्ट ना करना, किसी हर्ट होए नूं देख के उसनूं बर्दाश्त ना करना। तुहाडे दिल च दया आनी चाहिए, दया एक गुण है, दया एक गुण है। कहिंदे सत संतोख दया धर्म श्रृंगार बनावो। हुण अपने जिंदगी च जिन्हां ने पुछया है, यह सब तो पहला सबक है। कल दे कीर्तन च इस तो अगली गल मन और आत्मा दी कीती जाएगी। दास ने पहले दिन जो शब्द गायन किया सी उस दे विच गुरु बाबा जी ने तिन्ने ही चीजां नूं एड्रेस किया सी, बॉडी माइंड एंड सोल। अज असी सिर्फ बॉडी दे ही लैवल ते, उठन बैठन दे लैवल ते, अपने इंट्रैक्शंस दे विच, एक दूसरे दे नाल मिलन गिलन दे विच, जो बोलन चलन दे विच, तमाम जो गुण हन जिन्हां दी ग्राउंड तो बिना भक्ति आरंभ नहीं हो सकती, अज असी उन्हां दी गल कर रहे हैं। मिठत नीमी नानका, गुण चंगियाईयां तत मिठत। हुण जे तुहाडे सुभा दे विच कौड़ापन है, बिटरनेस है, रूडनेस है, मिठास नहीं है, तो फिर तुहाडे परमात्मा नजदीक नहीं आ सकदा, तुसी भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि ये अवगुण है। सो इस नूं अज ही त्याग के चले जाओ, और अज सुगन कसम लाओ महाराज के चरणां च बैठ के कि मैं इस अपने मंदिर दे नाल, इस इंस्ट्रूमेंट दे नाल कदे भी कौड़ा नहीं बोलांगा, मिठत। और जिस दिन कौड़ा बोल पाए उस दिन समझ लो निर्गुण राम गुणे वस होए। कौड़ा बोलदिया सार अवगुण आ गया कि तुसी अफोर्ड करोगे अवगुण, क्योंकि अवगुण ने वाहिगुरु नूं दूर कर देना, वो अवगुणा तो दूर हुंदा है। दूसरी गल आखी है मिठत नीवी, वो है निम्रता, नीवे बनना, नीवे बनना, किसे तो अपने आप नू सुपीरियर ना समझना। ए नहीं समझना कि दूसरे मेरे तो किसे भी तरह मेरे तो कम हन, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। ए आदतां हन, ए सुभा हन, पहला ए तारण करने हैं। ए अज असी
ਭਗਤੀ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ, ਨਿਮਰਤਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਗੁਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਚ ਅਵਗੁਣ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਗੁਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸਭ ਸਲਾਹ ਆਪ ਕੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਉ ਅਗਲੀ ਇਜ਼ ਦੈਟ, ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹੋ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦੋ ਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਦੇ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਸਭ ਸਲਾਹ ਆਪ ਕੋ ਵੱਡੋ ਵਡੇਰੀ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹਦੇ ਹਨ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਲਾਹੋ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਪਾਸ ਘੱਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੈਨ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਯੂਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੂ ਕੰਕਰ ਅਦਰਸ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਜਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ, ਵਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਲਵ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਨੀਡ ਫਾਰ ਦੈਟ। ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ, ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਉਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਕਰ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾ। ਥੋੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਦੇ ਕੇ ਗੁਜਾਨੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀਸਿਟੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਸਾਦਗੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਡੰਬਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਸੁੱਚ ਪੰਨੀ, ਖਾਣਾ ਖਾਜ ਅਹਾਜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਹੀ ਹਨ। ਸੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਠਾਸ, ਸੁੱਚ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੁੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਪੇ ਚੱਕੀ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪੇ ਖਾਈ ਜਾਓ। ਸੀਲ ਸੰਜਮ, ਸੰਜਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਵਜੇ ਹੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਤਨਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸੂ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਜਮ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਵਜੇ ਮੈਂ ਜਾਗ ਜਾਣਾ,
क्योंकि मैं अभ्यास करना है, इतने बजे सौ जाना है क्योंकि अमृत वेले उठना है, वो डिसिप्लिन है। अननेसेसरी कितने टाइम वेस्ट नहीं करना है, अते सिर्फ लोगों नु अबलाइज करने दे वास्ते, लोगों नु अबलाइज करने दे वास्ते रात दे एक एक दो दो बजे तक पार्टियों च बैठे रहे थे, अमृत वेले कदों उठोगे तुसी? उस दे लिए डिसिप्लिन होना चाहिए है। उस दे वास्ते लोगों की कई दफा अगर नाराजगी सहारनी पवे तो गुरमुख जो है वह उसनु भी कह दिंदा है कि मेरे डिसिप्लिन दे विच फर्क पैंदा है, डिसिप्लिन दे विच रहना, संजम दे विच रहना, सील संजम सोच। कहिंदे ऐ तीन चीजां ते भन्ने ही दित्तियां हन, सील संजम सोच। सोच दा अर्थ हुंदा है बहुत पवित्रताई दे नाल इस मंदिर नूं वाहिगुरु दा मंदिर समझ के कि मैं वाहिगुरु नूं सर्व कर रहा हां, बहुत ही साफ सुथरे ढंग दे नाल प्रेम नाल सर्व करना है, ना कि जूठे मूठे हत्थां नाल आप ही चक्की जाओ, आप ही खाई जाओ, आप ही पाई जाओ। सुच का नामो निशान नहीं रहा, असि नाले खाई जाने हैं, नाले लिखी जाने हैं, नाले खाई जाने हैं, नाले टेलीफोन अटेंड करी जाने हैं, वही झूठे हाथ टेलीफोन लगते हैं, फिर कोई दूसरा आके उसको पकड़ता है। सील संजम सुच पन्नी कहते पन्न दिती है, ये अवगुण हैं, खाना खाज अहाज, अते खाना साडा उस दे विच हुण सानू होश ही नहीं रही, ये बनाया किसने है, किवें बनाया है, साफ सुथरा होके बनाया है जां नहीं बनाया, खाज अहाज जो गलत मलत है वो असी खान लग पए। रेस्टोरेंट्स दे विच असी खाने हैं, तुसी कदे सोचो ते सही वो लोग जो अंदर रोस्ट हो रहे हैं, वो बड़े बड़े ओवनस दे आले दुआले खड़े होके कुक कर रहे हैं, वो बहुत मन दी शांति च अते प्रेम दे नाल कुक कर रहे हैं, कोई भावना दे नाल तुहाडे सामने प्लेट लिया के रखते हैं, पता नहीं कितने जले पुजे हैं अंदरों बेचारे सारे दिन दे थके मंदे, ते उस किस्म दी एनर्जी उस फूड दे विच आंदी है जिसने तैयार किया है, असीं बाहर बैठ के उसनूं रैलिश करते हैं, किस स्टेट ऑफ माइंड दे नाल उसने बनाया है सानू कोई पता नहीं है, उसके हाथ साफ सन या नहीं सन सानू पता नहीं है, सुचे सन नहीं सन, कितने ऐसा तो नहीं कि साढ़े ही खाने नूं उसने पहला टेस्ट करके देखा होवे कि स्पाइस ठीक है या नहीं है, हाउ डू वी नो, पर साढ़े च कोई अज परहेज ही नहीं है, जिथे मर्जी बैठ जाओ और खा लो। दास ट्रैवल कर रहा सी लंडन तो मस्कट तक की फ्लाइट दे विच, ओ एयर होस्टेस दो तीन दफा आई हैं पूछने लगियां कि मिस्टर सिंह यू वांट एनीथिंग, मैं कहा नो आई हैव माई ओन वाटर एंड समथिंग टू ईट। फाइनली उन्होंने मैंने पूछा कि वट इज द रीजन यू आर नॉट टेकिंग इवन टी फ्रॉम अस एनीथिंग इवन वाटर, मैं क्या इसका कारण यह है कि इको ही ट्रॉली दे विचों तुसी मीट भी सर्व करी जा रहे हो, अल्कोहल भी सर्व करी जा रहे हो, बीयर भी सर्व करी जा रहे हो, फिर लोगों के जूठे भांडे चक चक के फिर वापस रखी जा रहे हो। मैं क्या हैव यू वॉश यूर हैंड्स, कहती नो, मैं क्या देन आई कैन नॉट टेक फ्रॉम यू, इफ यू वॉन्ट टू गिव मी समथिंग गो एंड वॉश यूर हैंड्स क्योंकि क्लीन नहीं है। तो कहते हु कैन बॉदर फॉर ऑल दैट, वी कांट बी बॉदर फॉर ऑल दैट, इस करके मैं कहा मैं तो कुछ लैके खांदा नहीं। ये अवगुण हैं, असा ए तमाम कुछ जो ग्राउंड है इसनु पहला सीखना है, उठना बैठना खाना पीना बोलना चलना ये तमाम पहनना ये सब कुछ सीखना है। और सब तो वड़े जो गुण हैं वो है निम्रता, वो हो सबना की रेणुका ताओ आओ हमारे पास। महाराज जी कहते इतनी निम्रता तेरे अंदर होवे कि तू सारे दे चरणा की धूड़ बनिया पिया होवे ता जाके साडे पास आई, वो सबना की रेणुका ताओ आओ हमारे पास। मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईया तत, फिक्का बोलन की गुंजाइश ही नहीं छड़ी महाराज ने, नानक फिक्के बोले तन मन फिक्का होए, फिको फिक्का सदिए फिक्के फिक्की सोए, फिक्का दरगाह सटिए मुंह थुक्का फिक्के पाए, फिक्का मूर्ख आखिए पाणा लहे सजाए। पाणा जुतियां नूं आखदे हन, कहिंदे हन दरगाह च उसदे जुतियां पैंदी हन। नाउ थिंक जदों भी तुसी फिक्का बोले हो ते तुहाडे उत्ते आ कुछ लागू हुंदा है, फिक्का दरगाह सटिए मुंह थुक्का फिक्के पाए, फिक्का मूर्ख आखिए उसनूं मूर्ख आख्या जांदा है,
سو کس طرح فقہ بول سکتے ہو؟ اے تمام چیزاں نو آلٹر کرنا ہے نا، اینا تمام چیزاں نو بدلنا ہے، یہ سارے شبھ گن اپنے اندر دھارن کرنے ہیں، جے گن نہیں ہن تے ون گن کیتے بھگت نہ ہوئے۔ کسے تو جا کے پکتی دا سوال نہ پوچھنا کہ پکتی کیویں کرنی ہے، جے اس دی گراؤنڈ ہی تیار نہیں ہے، جے شبھ گن ہی تیار نہیں ہے۔ اج گنا دی گل کیتی ہے، وچ از دا گراؤنڈ ورک۔ کل نو اسی جو من اور آتما دی تھوڑی جی وچار سمرن ابھیاس دی وچار کران گے، آپ جی کرپا کر کے سمے سے راؤ تاکہ کل نو شام دے کیرتن سارے کیرتن کنکلوڈ ہو جان گے۔ تو آؤ پریم نال اس پنکتی نو گاؤ کہ مندہ پھر بن کیا شنگار، پھر اکال پرخ واہگرو تا نیڑے آندا ہے، جے گن ہون جے او گن تیرے اندر گڑے پئے ہن تے او تے تیرے تو بہت دور چلے گیا ہے، تے تو اپنے آپ دی جو فلت ہے اگلی نس ہے اس نو تو صرف ٹکی جا رہی ہے شنگار کر کے سندر کپڑیاں نال، گہنیاں نال، کاسمیٹکس نال، پرفیومز آدھے نال۔ کہندے ہن اس شنگار دے نال واہگرو نے نیڑے نہیں آنا، کیونکہ اس نو تیری اندرلی حالت کا پتا ہے کہ اتنے ہر دسر تیرے گن گلے، یہ تیری حالت ہے۔ پریم نال گاؤ۔